0: திருச்சிராப்பள்ளி வானொலி அலைவரிசைகளில் இனி கேட்கலாம் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள்.
1: குட் ஆப்டர்நூன், திஸ் இஸ் ஆகாஷ்வாணி. ஐ எம் சரப்ஜீத் கோர் வித் தி மிட் டே நியூஸ். தி ஹெட்லைன்ஸ். Home Minister Amit Shah says government ready to discuss all the issues, urges opposition to allow parliament to function. Disruption continues in both houses amid opposition's uproar on several issues. Prime Minister Narendra Modi urges youth to read autobiographies, warns against shortcut culture of reels and social media. Har Ghar Tiranga campaign gains momentum. Vice President C.P. Radhakrishnan says spirit of Vande Mataram continues to strengthen national identity. Himachal Pradesh government imposes orphan and widow cess on petrol and diesel to fund welfare schemes. 6 persons killed, 4 injured after landslide hit Mumbai's Ghatkopar area due to heavy rain. And in chess, Indian Grandmaster Pragananda defeats Uzbekistan's Javokir Sindarov in second round match of Singfield Cup in United States. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah today said that the government is fully prepared to discuss any issue, including the students' issue, and answer any questions raised by the members in the parliament. Speaking to reporters at the parliament premises, Mr. Shah said that the government has nothing to hide and is ready for discussion. The Union Home Minister said the opposition may submit the notice to the Speaker for holding a discussion on the issue so that the debate can start at 3 p.m. today.
2: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे.
3: प्लीज सबमिट दैट लेटर टू द स्पीकर बाय 3 PM टुडे. फ्रॉम 3 PM टुडे अंटिल 3 PM टुमारो वी आर रेडी फॉर अ डिस्कशन ऑन ऑल मैटर्स. आई विल रिमेन प्रेजेंट इन द हाउस, लिसन टू एवरीवन एंड रिस्पॉन्ड टू ऑल द पॉइंट्स रेज्ड. द गवर्नमेंट हैज नथिंग टू हाइड, एवरीथिंग विल बिकम क्लियर बिफोर द पीपल ऑफ द कंट्री.
2: देश की जनता के सामने सारी चीजें